उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये संगीत बहुत ही पसंद आया होगा। मोहित चौहान की आवाज़ में विशाल भारद्वाज का कंपोज किया हुआ सॉन्ग पहली बार मोहब्बत। तो चलिए अगला संगीत हम लेके आते हैं। बहुत ही मशहूर हुआ था ये गाना फिल्म भूल भुलैया में से। ये गाना है श्रेया घोषाल का जिसका नाम है मेरे ढोलना।

वाह क्या बात है। तो ये गाना था श्रेया घोषाल की आवाज़ में मेरे ढोलना, जिसको प्रीतम दा ने कंपोज किया और विद्या बालन ने इन पे भूमिका की थी भूल भुलैया फिल्म से। तो अगला गाना आपके लिए लेके आ रहे हैं रॉक स्टार फिल्म से, जो कि रणबीर कपूर की फिल्म थी, जिसके लगभग सारे गाने मोहित चौहान ने गाए थे और कंपोजिशन की थी ए आर रहमान ने। तो चलिए आनंद उठाइए इस गाने का।

तो चलिए समा है अब मुझे इजाजत लेने का, मिलते हैं अगले हफ्ते एक बार फिर से। उम्मीद करता हूं कि आपको सभी गाने बहुत पसंद आए होंगे, और जाते जाते एक श्रेया घोषाल की आवाज़ में ये गाना आपके लिए फिर से, जिसका नाम है तेरी मेरी कहानी।